0: hắng hải.
1: आदित्य जी अपनी टी शर्ट उतारिए. टी शर्ट उतारिए. अरे क्यों मतलब? देखो आप उतार रहे हो या मैं उतार?
2: जिन्नी क्या कर रही हो? उतार.
1: मैं टर्न हो जाती.
2: तुम अजीब हो. पहले बोलती हो टी शर्ट उतारो फिर शर्मा के टर्न हो जाती हो.
1: मैं नहीं शर्मा रही. मैंने लगा आप शर्मा रहे.
3: हाय वाव हाँ तो सड़ी के तो
4: दिन भी हो रहा है इससे क्या नहीं हो रहा है बातें पता ही
3: आर मिगे करना का जीमा बिरे विष्णु गणित है
4: मिगे करना नहीं माँ पेन हूँ मिगे
3: हाँ तो गधे को पिए दो
4: नुमा कुछ एपिस में हो गया कुनोड़े ये नाज़िम भी ओफी होगा. शिफाना को आगे एने के देता जिम भी हॉस्पिटल अगोस. कॉफी नीचे बोन है ता?
3: ना नूने मिहार ने कॉफी ये बोई थे. खोबात जीमा दें बुनी इच्छी इच्छे बदार ना शे बुनी मधो मिया ईवस.
4: मिहरी ये
3: ये कोच चत्ता
4: तेरं जवाहिरो आलिमस रिही वे सेबहुरी
3: की के
4: अरे पाला पाला
3: ये बुना है मियो मी का को गेचे से
4: माके आहारेंगे ती नाजम शिफारने दीप हुरी सामानो एना तुम तुलाफा आहार नती ने
3: हाँ तो पढ़ोगे कमी चीवी काले वेने दो
4: विकाला का नूने मिली ने ती कहीं को स्वरो आफ बाढ़ता आहार में नती के बेनु जे ने फाहू देम्यो ती विही हसरुफिया मी मीमाओ के होरिहा कमका फुद्दम वाने अनेक कालार दे नुपुनाते
3: आहार मी तगरनी हुडुमा देंगे अपार्टमेंट एक कोई अंडा कम विये
4: एयो मानियो एकड़ माय कड़ी उन्हें की कुरा अपार्टमेंटे मी और काशे आको गिनती को तब कोटरी एक उड़नी मम्मा आहार तो कुड़े एन्नो
3: आ देंगे आहार मी है काशे आको गिन कोटरी कंडे एक उड़ना सो के एन्नो जीमा तो उन्हें बड़ू कांडो वाले खाद के एक रानी एंग है विया
4: आज आहार में देमी हूँ लग्जरी अपार्टमेंट का उड़े दोस्त वे सन्ना ने कितने भी पला तिहुरी हाँ कमें बस हम चाहिए नहीं
3: मिहार कंकंग कंग बहिंग गाता गादा इंगे
4: गादा वाने जीमा कुरा कमें कुराने फिर सारे रंगड़ा एक अंगे में रंगड़ा इंगे नहीं बस मानी वो
3: इंगे इंगे एक अमुक जीमा मिहार अहन्ना बदल कुरांग अंडे दे माँ मधु
4: मानी मिका केते वे बाला आर मिहुरी हाँ कमें मिकुरने वारा रेवों तेरे कमाई की गए मिकं कुरें जहेनी वारा विस्नागे मीहा का कोड़ा वे शक्के वेच्चे या आहार में के दोस्ती है तेंदे आहार पाऊंगा.

0: स्कूल के दरवरों के तरह एम एस दरवर की स्कूल के कैप्टन कैप्टन के जिम्मा वर बड़वान अद कैप्टन के मगामा अन्नंग ए दरवर को वर गिन मसक के तक कोरान अलगन में हुरवी स्कूल के कैप्टन की रायान बिन मुसद कैप्टन ना बदल को वाक दक कालानी अशद्दी के दरवर अशद फिरशा फारिश
1: मैं हुरवी स्कूल के ग्रेड आशय के दरवर अशद फिरशा फारिश मिहार में बदल को लेनी हुरवी स्कूल के कैप्टन रायान बिन मुसद रायान वरपोटा मरहब आएंगे
2: शुक्रिया
1: रायान ते मिहार स्कूल कैप्टन कोयरा को रायान स्कूल कैप्टन का वांग उम्मीद करी
2: मैं कोरिन स्कूल के इस मगाम तक गति बिदारी वरम फेनी एको दिन नमोना एक गतु बेलिंग आदि एको दिन हिदुमत तब वेस फेनी एही साब उन स्कूल दम मिफद हिदुमत एको दिन उनके शाओगो रे कांगो फेदुनु
1: एम विमा रायान स्कूल कैप्टन के एम में मुहिम दावर के कोबा
2: स्कूल कैप्टन के एम में मुहिम दावर की दारीवरों ने रगलो नमूना इत्तेक कुमा हुरिया दारीवरों के में दुगा एक्वेरी कमा एब्बा वंत कं गायम करो
1: रैन तिबुनी कोता स्कूल के हैं कोदे ना गुरुम बधे करने की ने
2: एम में इसका में देनी एम में का आडो हां आदि कम में कुछ जिकी मुहिम में कुछ जिकं इहसास को दी रीत को मुआमले को गुरुम वर्ग दे करूं मसके करूं ए रायान कुरा कम की
1: स्कूल कैप्टन का भी मैं स्कूल के वर्ग के ना खंतो का उलें जहेनु अरे केवम बस वगुत बेनु माने कीने हुरिया कम का वगुत उस करनी
2: केवम एवर कूल के जिम्मा ता बस कुरे गेंदे में की बाय फार उदगु कम हुरिया कम का बस एवर का वगुत देवे तो बन स्कूल कम कम बस शामिल रगल नतीजा वे सोदम बेनु एहे में दोहग मतिन वगुत बहाले कुरे गेंदने
1: वगुत बहाले ग मेर फाहग कलाफे कीने रायन वगुत बहालेनी
2: वगुत बहालेनी बड़ा इसकन देंजे हेकंत मिसाल का टेस्ट तो नुवत हदनजे फिलावळ तक बड़ा इसकंदी फे एचे कुरिया गेनम ए दुह कुरंग वन बड़ा मुहिम कंकम वगुत देवने गे गे इन्नान बप्पा बुणगिन तावले वे सदाव
1: कम्मे कुच्चे कवस केमु का वर गिन बाय के हिवर दे बेने रयन न कोंबे के फराते में बड़ा हिवर दे बेनी
2: एमे बड़ा हिवर दे बेनी मम्मा बप्पा के फरातम आदि गिन टीचर के फरातम वे हिवर दे बे
1: रयन देखे गोतुगा हिरंगड़ो लीडर के खेपागा कौन सिफत के हुननी
2: रगळ लीडर किबाग हुनन जे सिफत को तेरें खेत्तेरी कम अमानत्तेरी कम तेदुरी कम आदि एहेम मिहुने इहतिराम करुम वेसिमिने एगे तेरें वेस खेत्तेरी मम अडोहेम वेसे वर मुहिम कम
1: ए रायान मी वर्ल्ड कप तो सरेनो कोन टीम का सपोर्ट करेनी
2: अर्जेंटीना
1: हीवत अर्जेंटीना मी फहर वेस ताशे गेन दाने हे
2: असले हा बड ही एनो एक लफा करे गत फ्रांस कन्ने के ताशिना गाने एमी गो टीम वर वरगत को मिहारोती
1: एहेम मी मरान वर बलंदो फुटबॉल
2: रायन वर गिनम बना वर शौगरो या कुली वरंगे
1: हे मी मडायान उस फुटबॉल कुलेंता
2: रायन उस कुलें आदि मियारो अंडर 17 टीम को कुलुने
1: रायन एमे बोडा सपोर्ट कुरा फुटबॉल कुलुन तेरिया की मेसी दो
2: हां मेसी एहे मी मता अर्जेंटीना सपोर्ट कुराने
1: एहेन हीवे के मी एही बस देन फुटबॉल वाहक पाववानेगे कंकम गा मायूस वायर रायन कीने हादनी
2: रायन बड़ बलानी एका कंता का में दो नुविसना ए हादान नता नो दें कुरियंग वत्ता का बला एका रगल का कुरवेन किहने तो बेलूं
1: रायन मिहार कुरा एम में बड़ उम्मीद तक के कोबा
2: मिहार में मासक के कुरानी ओले बिन रगल नतीजा ने रेवे तो
1: एका मट्ट का कौन का में कुरानी
2: ट्यूशन का स्कूल का पास पेपर हादा गेगवस बाय फिलावल ता मुतालिया कुरवे तो बनो
1: रायन वस बरे शुक्रिया प्रोग्राम वगत करे दिनी थी
0: अलगन में कम दरवर की वस उम्मीद तक हुन्ना ने दरवर ए उम्मीद ता हासिल करमा परग के नमस्क के तक वस कुरंज है एको तुम अलगन में स्कूल कैप्टन रायान बिन मुसद में उम्मीद तं हासिल करमा कुरी मस्क के ता अलगन में नंग हाम वेज
3: एहमे मा होरी हा दरवर वस अजमा का एको कामयाबी अद्यो मा मस्क के कुरचे
0: कियान बेणन ता लवे नोनी मदहें अडवा हालम
3: मदहें अडवा हालम वर बेणु
4: صلوات أمي

के आबादी 70 मिलियन फॉर द प्लेइंग ऑफ द नेशनल एंथम ऑफ क्रोएशिया क्रोएशिया बाद में सलाम.